0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

वेदसप्ताह यज्ञः वेदः अतीव अस्माकं जीवनस्य सर्वमपि विषयं बोधयति स वेदः ऋग् यजुस्साम अथर्वभेदेन चतुर्धा व्यासेन विभक्तः वेदानां तात्पर्यं धर्मबोधने ब्रह्मणः स्वरूपज्ञानाय च अथापि लौकिकाः विषयाः सर्वेपि दैनन्दिनाः विषयाः वैज्ञानिकाः विषयाश्च वर्तन्ते इति इदानीं जनानां बोधनाय श्रद्धा उत्पादनाय काञ्चीमहास्वामिभिः अनन्तरं जयन्सरस्वतीस्वामिभिः विशिष्य शङ्करविजयन्द्रस्वामिभिः अयं वेदसप्ताहयज्ञः तत्र तत्र नगरे मद्रपुर्यां त्रिषु स्थलेषु आसीत् ऋग्वेदे यजुर्वेदे सामवेदे च के विषयाः सन्ति अस्माकम् अनुष्ठाने जातकर्मादिकर्मसु अनुष्ठानेषु च ये मन्त्राः तेषाम् अर्थः कः इत्यादि बोधनार्थम् अयं यज्ञः पूर्वेद्युः अत्र केचन विषयाः मया उक्ताः अस्मिन् दिने एवमेव इतः परमपि पञ्चसु दिनेषु बहवो विषयाः कथ्यन्ते பகவான் உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வேதத்தை சிருஷ்டி பண்ணார் அப்படிங்கிறதாக வேதத்தினுடைய டேட்டை பற்றி சொல்கிறச்சு பல பல பிரமாணங்கள் சொல்லி சொல்லிட்டோம். சுக்லயுர்வேதத்தில் பிருகதாரண்யக உபனிஷத்தில் அஸ்ய மகதோ பூதஸ்ய நிஸ்வசிதமே தத்யதிர்க்வேதோ யுஜுர்வேத சாம வேதோ தர்வாங்கிரசா இதிஹா